गले से दिल लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से दिल लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा। बहुत बोला बेटा न जाएगा।